आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। वृक्ष शिखर सम्मेलनस्य प्रथम दिवसे सर्वसम्मत्या नवदेहली घोषणापत्रम् अंगीकृतम्। घोषणापत्रस्य अंगीकारः सदस्य राष्ट्राणां समन्वितानां संकल्पानां कृते स्पष्ट मार्गदर्शकः इति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना मलेशिया वियतनाम इथियोपिया प्रधानमन्त्रिभिः तथा अबुधाबी युवराजेन सह द्विपक्षीय वार्ता सञ्चालिताः। अद्य सायं चीन राष्ट्रपतिना शी जिनफिंग वर्येण सह संभाषणं विधीयते। षड्वर्षीय स्थगनं समापयता चीन देशेन अस्य मासस्य एकविंशति दिनांकात् ग्वांगझोउ नवदेहली मध्ये नियमित यात्री विमान सेवाः पुनः प्रारप्स्यन्ते। अपि च महिला हॉकी क्रीडायां चीनस्य मुकीनगरे आयोजित